पड़ाव डाल दिया। ये शवाल का वाकया है। मदीने के जराए इतलात मक्की लश्कर की एक एक खबर मदीना पहुंचा रहे थे, हत्ता के उसके पड़ाव की बाबत आखिरी खबर भी पहुंचा दी। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौजी हाई कमान की मजलिस शूरा मुनक्कद फरमाई, जिसमें मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए सुलह व मशवरा करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना देखा हुआ एक ख्वाब बतलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि वल्लाह मैंने एक भली चीज देखी, मैंने देखा कि गायें ज़िबह की जा रही है और मैंने देखा कि मेरी तलवार के सिरे पर कुछ शिकस्तगी है और ये भी देखा कि मैंने अपना हाथ एक महफूज ज़िरा में दाखिल किया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय की ये ताबीर बतलाई कि कुछ सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कत्ल किए जाएंगे। तलवार में शिकस्तगी की ये ताबीर बतलाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का कोई आदमी शहीद होगा, और महफूज ज़िरा की ताबीर ये बतलाई कि उससे मुराद शहर मदीना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमाइन के सामने दिफाई हिकमत अमली के मुतालिक अपनी राय पेश की कि मदीने से बाहर ना निकलें, बल्कि शहर के अंदर ही किला बंद हो जाएं। अगर मुशरिकीन अपने कैंप में मुकीम रहते हैं तो बेमकसद और बुरा क़याम होगा, और अगर मदीने में दाखिल होते हैं तो मुसलमान गली कूचे के नाकों पर उनसे जंग करेंगे और औरतें छतों के ऊपर से उन पर खश्तबारी करेंगी। यही सही राय थी, और इसी राय से अब्दुल्ला बिन उबई रासुल मुनाफिकीन ने भी इत्तफाक किया, जो इस मजलिस में खजरज के एक सरकर्दा नुमाइंदे की हैसियत से शरीक था। लेकिन उसके इत्तफाक की बुनियाद ये ना थी कि जंगी नुक्ता नजर से यही सही मौकफ था, बल्कि उसका मकसद ये था कि वो जंग से दूर भी रहे और किसी को उसका एहसास भी ना हो। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उसने चाहा कि ये शख्स अपने रुफका समेत पहली बार सरेआम रुस्वा हो जाए और उनके कुफर व नफाक पर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो हट जाए, और मुसलमानों को अपने मुश्किल तरीन वक्त में मालूम हो जाए कि उनकी आस्तीन में कितने सांप रींग रहे हैं। चुनाचे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक जमात ने, जो बदर में शिरकत से रह गई थी, बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि मैदान में तशरीफ ले चलें, और उन्होंने अपनी इस राय पर सख्त इसरार किया। हत्ता के बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम तो उस दिन की तमन्ना किया करते थे और अल्लाह से दुआ करते थे, अब अल्लाह ने ये मौका फराहम कर दिया है और मैदान में निकलने का वक्त आ गया है, तो फिर आप दुश्मन के मद्दे मुकाबिल ही तशरीफ ले चलें, वो ये ना समझें कि हम डर गए हैं। इन गर्म जोश हजरात में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरे फहरिस्त थे, जो मारकाए बदर में अपनी तलवार का जोहर दिखला चुके थे कि उस जात की कसम जिसने आप पर किताब नाजिल की, मैं कोई गजा ना चखूंगा यहाँ तक के मदीने से बाहर अपनी तलवार के जरिए उनसे दो दो हाथ कर लूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने अक्सरियत के इसरार के सामने अपनी राय तर्क कर दी, और आखिरी फैसला यही हुआ कि मदीने से बाहर निकलकर खुले मैदान में मारका आराई की जाए। सामईन, वक्त की कमी के बायस हम अपने इस सिलसिले को यहीं पर बर्खास्त करेंगे। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली नशिस्त में। तब तक के लिए कासिम भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगेबान।

0: ये है पाकिस्तान की आवाज UCP रेडियो FM 92.6।
1: सूफी सिंह ज़हू, दैट विच इज, दैट विच वॉज, दैट विच विल बी।
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
3: ایک نیا انداز
2: ایک
3: نئی سوچ एक नई पहचान
4: एक नई लगन
3: UCP में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
3: जब मिलती है लगन,
4: मेहनत,
3: कामयाबी और खुलूस,
4: तो बनती है
3: UCP की दुनिया।
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
3: सुनते रहिए।
5: गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड इनटू UCP फैकल्टी आर एंड आई एम योर होस्ट नायाब अफसल। I'm a lecturer at English Language Center, Faculty of Languages and Literature. Well, today we have a fantastic panel with us. Joining me is Dr. Habib Ghazi, who is an Associate Professor of English and Director of English Language Center. We also have Ayman Saqib, a bright student from the third semester of the Faculty of Management Sciences, and Mr. Shamir, a seventh semester student from Department of English. Well, I believe it's going to be an insightful session, so please stay tuned as we dive into an engaging discussion. Well, dear listeners, I'm going to ask my first question to Dr. Habib Ghazi. Having over 20 years of experience in teaching language and research across different countries, sir, jaise ki aapne UAE mein padhaya, Saudi Arabia mein padhaya, and shayad England mein bhi padhaya. So, what is your view? I mean, it has a significant difference between teaching in Pakistan or these other countries.
6: Thank you very much, Nayab. First of all, thanks for having me today. अब ये जो आपका सवाल है, इसको ज़रा डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा, डिफरेंस टीचिंग के हवाले से। तो हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, द वे इंग्लिश इज़ टॉट इन पाकिस्तान एंड द वे इट इज़ टॉट अब्रॉड, सो लेट्स डेल्व इनटू इट फर्स्ट।
5: बिल्कुल।
6: उसमें यह है कि मिसाल के तौर पर, अब जैसे हमारे यहाँ आप अगर स्कूल की एजुकेशन देखें, and primarily I'm talking about our schools which follow conventional scheme of study.
5: Right.
6: तो उसमें English language teaching के हवाले से आपका सारा जो emphasis है वो रहता है reading और writing के ऊपर।
5: बिल्कुल सर, ऐसा ही है।
6: और जो assessment है वो भी reading and writing focused है। Not only that, उसमें जो एक learning, एक रट्टा के जरिए जो एक लर्निंग है, उस पे ज्यादा फोकस है।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
6: तो अब जब आपके स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, लाइक लेट मी कॉल देम फ्रेशर्स, फर्स्ट ईयर BS में जब एक स्टूडेंट एडमिशन लेके यहाँ पे आता है, तो उसके पास आई ऑलवेज बिलीव्ड के जो वोकैबुलरी और ग्रामर के हवाले से उनका इनपुट उनके यहाँ बहुत ज्यादा है।
5: बिल्कुल।
6: लेकिन The problem is they have never been given an opportunity to practice language skills. Or skills se yahan pe meri murad 4 different skills hain, jaise listening hai, speaking hai, reading hai, writing hai, and all these skills are equally important. To aapki do skills 12 saal school mein ignore hui hoti hain.
5: Aisa hi hai sir.
6: To agar hum isi ko leke chalenge aage, to aap phir wahi grammar pad rahe honge, वही कंपोजिशन लिख रहे होंगे, और वही आपकी जो कंसंट्रेशन है वो लर्निंग बाय रोट रट्टे पे ही रहेगी। अब आपने जब ये कहा कि इस हवाले से पाकिस्तान में और बाहर के ममालिक में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस ये है कि अगर आप यूएई में हैं एंड बाय दैट आई मीन लाइक ऑल गल्फ कंट्रीज और जहाँ पे इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाया जाता है एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट गल्फ कंट्रीज ग्लोबली आप जापान की मिसाल ले लें आप चाइना की ले लें आप कोरिया की ले लें यू नो लाइक बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास जहाँ पे इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाया जाता है विद अ फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट तो वो ये सारी स्किल्स के ऊपर क्लासरूम के अंदर इक्वल एम्फेसिस के साथ चलते हैं एक ये डिफरेंस है सेकेंड डिफरेंस ये है कि क्लासेस इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में स्टूडेंट सेंटर्ड होती हैं यानी ज़्यादा आप स्टूडेंट से काम करवाते हैं एंड योर रोल एज ए टीचर इज जस्ट दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर यू आर फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स इन कैरिंग आउट डिफरेंट एक्टिविटीज इन द क्लासरूम तो ये एक मेजर डिफरेंस है और यहाँ पे यूसीपी में मैंने उसी डिफरेंस को अकोमोडेट करने की कोशिश की है बाय इंट्रोड्यूसिंग एक तो कंटेंट चेंज किया और कंटेंट हम कन्वेंशनल जो कंटेंट था ये उससे निकले तो अब हमारे पास वो कंटेंट है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में जो के कहीं और अवेलेबल है यानी दिस वे वी हैव अलाइंड आवरसेल्व्स विद ग्लोबल ईएलटी प्रैक्टिसेस अब इसके साथ जो एक और चीज जुड़ी हुई है कि ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग बिकॉज टीचर्स को भी उसी हवाले से प्रॉपरली ट्रेंड किया गया है कि आपने फोर डिफरेंट स्किल्स को कैसे इम्पार्ट करना है और स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना है और जो है जैसे कि लाइक आई ऑलवेज यूज टू से कि अगर इसको हम एक डिवीजन में जाएं तो 70-30 की रेशियो है कि 30% टाइम जो है टीचर टॉकिंग टाइम वो टीचर्स अगर 30% ऑक्यूपाई कर रहे हैं और 70% वो स्टूडेंट पे जा रहा है तो इससे मैं ये कहूँगा कि दिस इज एन आइडियल लेसन
5: सर आपकी इस बात से मुझे याद आ गया जब हम पढ़ते होते थे तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है इंग्लिश की क्लास पढ़ाने जो हमारे टीचर्स आते थे इंग्लिश के वो हमें उर्दू में पढ़ाते थे इंग्लिश की क्लास मतलब द स्पीकिंग और जो टीचर का इंस्ट्रक्शंस देने का मोड था वो हमेशा उर्दू में होता था आई होप मेरे साथ शामीर और एमन भी एग्री करेंगे इस बात पे बिकॉज दे आर द स्टूडेंट्स एंड दे हैव बीन फेसिंग दिस तो एमन और शामीर आप क्या कहेंगे इस बारे में इंग्लिश अब तक किस तरह से पढ़ते आए
7: अब तक इंग्लिश जो हमने पढ़ी है मोस्टली हमारी क्लास में आके उर्दू में कन्वर्सेशन चलती थी ठीक है लेकिन सरकाजी ने जो कोर्स हमें रिसर्च मेथडोलॉजी का पढ़ाया सरकाजी यूजेस इंग्लिश मोस्टली इन द क्लासरूम बट फॉर द बेटर कम्प्रीहेंशन ऑफ स्टूडेंट्स हु लैक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज ही यूजेस बायलिंगुअल लैंग्वेजेस ये उर्दू में भी कन्वर्सेशन करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझ बेहतर आ सके जिनको इंग्लिश पे इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है तो ये मेरा पॉइंट
5: बिल्कुल एमन आप कुछ कहना चाहेंगी इस पे क्योंकि आपने तो मेरे ख्याल से दोनों तरह के मोड से किया हुआ ना व्हेन योर टीचर वर कमिंग एंड गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश एंड इन उर्दू एज वेल बिकॉज मुझे याद पड़ता है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर किसी और कन्वेंशनल स्टाइल से पढ़ा और सेकेंड सेमेस्टर आपने कैम्ब्रिज स्टाइल से पढ़ा तो आपका इनटेक क्या है इस पे
8: आई डू बिलीव दैट एज आई वर टॉट बाय यू आई रियली लाइक योर स्टाइल बिकॉज बिफोर हैंड व्हेन आई वाज लर्निंग इट वाज दैट आई वाज doing the same things I had been doing since last 12 years as Sir Kazi said, right? But when the system changed, I had a chance to improve my listening and especially my writing skills, I remember. Especially when it comes to the listening skills, many a times when we are watching movies or anything, we're just turning on our subtitles and doing that stuff. But when we had the chances to do quizzes and we had to listen stuff, we realized that, oh, this is something that we need to learn or we are learning and it was a very good help because bahut bade se hota hai ki hame jab ek cheez ki insight mil jati hai ki oh we have to work on it that's the main thing jaise sir ne kaha ki ek provider hota hai ek facilitator hota hai so that's something that I believe
5: तो सर काफी पॉजिटिव पॉइंट्स हमें इस पे मिले तो आपको सर ऐसा क्या चीज थी लाइक व्हाट मोटिवेटेड यू टू ब्रिंग दिस न्यू मेथोडोलॉजी हियर इन पाकिस्तान हियर एट यूसीपी
6: वो तो जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि एक ये स्ट्रांग रियलाइजेशन के टीचर्स जैसे उसे डेवलप करने की एक कोशिश कर रहे हैं स्किल वो एक राइट मोड नहीं है और अब मेरा जो क्योंकि एक्सपोजर जो था वो इंटरनेशनल था और मैं उसको एक्सपीरियंस करके रादर इट्स माय लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ से लाइक 12-13 इयर्स इन यू नो लाइक इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो मेरे लिए ये मुश्किल इसको समझना तो नहीं था, समझना बस यही था कि इसको क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. तो उस हवाले से एक डिसीजन लेना था, और ऑब्वियसली आपने जब डिसीजन लेते हैं तो दो तीन उसके पहलू हैं कि स्टूडेंट्स उसको कैसे लेंगे, कंटेंट जो हमने चेंज करना है उसमें चैलेंजेस क्या होंगे, और टीचर्स जो हैं लाइक आई ऑलवेज बिलीव्ड कि हमारे पास बहुत ही कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, तो उनको जस्ट एक मतलब सेशंस प्रोवाइड करने थे ट्रेनिंग के हवाले से. तो ये सारा हमने बिफोर हैंड हमने इसको प्रॉपरली उसको पहले विजुअलाइज किया, उसके ऊपर मेथडोलॉजीज तय की कि ये इन तीनों एस्पेक्ट्स को कैसे एड्रेस किया जाएगा, और फिर हम चल पड़े और ये हो गया.
5: जी आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, जहां हमारा इस वक्त एक शो चल रहा है UCP Faculty R, जिसका मेन फोकस है इस वक्त बियॉन्ड द क्लासरूम ELT एंड रिसर्च. हम अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और इसके बाद वापस आते हैं.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: 92.6.
1: आओ लेके चलूं तुमको बचपन की उन गलियों में जहां रंग है यार है यार फुर्सत है शायद कहीं इसमें तुमको तुम मिलो चलो कहूं तुमसे।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: जी मेरे मोहतरम सामईन, क्या आपने इस दो गाने को वैसा ही पाया जैसे मैंने आपसे कहा? आप इसकी शीरीनी से भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज हुए होंगे। लेकिन कि जब भी जब मैं किसी लंबे सफ़र पे जाता हूँ तो मैंने ये इसके गाने की सीडी रखी हुई है और जितनी बार भी सुनूं मुझे उतना ही ज़्यादा सुरीला लगता है, बल्कि आगे से ज़्यादा सुरीला लगता है और मुझे अपनी कम फहमी का एहसास मजीद दिलाता है कि मैं क्यों इतना ज़्यादा नहीं जानता था। हर दफ़ा ये एक नई जहद मेरे दिमाग में खोलता चला जाता है। तो जिक्र हो रहा था रशीद अत्रे साहब का। रशीद अत्रे साहब ने एक तरफ भांजे को मुतारिफ करवाया तो उन्होंने मेरा ख्याल बैलेंस करने के लिए अपने एक भतीजे को भी मुतारिफ करवाया। उनका नाम था मास्टर सफदर हुसैन। मोहतरम सामईन, इसकी तफसीलात आपको अगले प्रोग्राम में बताई जाएंगी। वक्त की कमी की वजह से आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM, UCP Ki Duniya. अरे ये किस चीज की आवाज है?
2: क्या तुम्हें पता नहीं ये लाहौर की मशहूर डिश टकाटक की आवाज है।
1: टकाटक, ये कैसा पकवान है?
2: जी बिल्कुल, ये पकवान ही है। जैसे पंजाब का मशहूर शहर लाहौर है, वैसे ही लाहौर का मशहूर पकवान टकाटक है। वैसे तो लाहौर के बहुत मशहूर खाने हैं, मगर टकाटक की बात ही अलग है।
1: वाह, क्या आप मुझे इसके बारे में मजीद बता सकते हैं?
2: बिल्कुल बता सकता हूँ। टकाटक ना सिर्फ अपने जायके बल्कि अपनी आवाज की वजह से भी मशहूर है। इस खाने का असल ताल्लुक कराची सिंध से है, मगर अब ये लाहौर पंजाब का मशहूर पकवान बन चुका है। एक और मजेदार बात आपको बताता चलूं, इसको कराची में कटाकट भी कहा जाता है और लाहौर में टकाटक कहा जाता है।
1: अच्छा, ये नाम टकाटक कैसे पड़ा?
2: इसका ये नाम इसकी आवाज की वजह से पड़ा है। जब एक बड़े से तवे पर दो तेज धार वाले चमचे टकराते हैं तो टकाटक की आवाज आती है। अब ये पकाने वाले की महारत पर मुनहसिर है कि वो इसको कितनी महारत से बजाता और बनाता है।
1: आपने ये तो बताया ही नहीं कि टकाटक किस चीज से बनता है।
2: तो मैं आपको बताता चलूं, टकाटक बनाने में बकरे के मुख्तलिफ अज्जा इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि गुर्दे, कपूरे, दिल, चांप वगैरह। इन सब अज्जा को मिसाला जात के साथ मिलाकर भूना जाता है और इस तरह से टकाटक तैयार हो जाता है। टकाटक के तैयार होने के बारे में मजीद जानते हैं एक मशहूर शेफ से।
3: इसमें सबसे पहले प्याज डलता है, फिर हरी मिर्च होती है, टमाटर होते हैं, मक्खन होता है, देसी घी, जो वो जिसमें आप कहेंगे वो बना देंगे, और लाल मिर्च होती है, गरम मसाला होता है, काली मिर्च होती है, और लहसुन वाला पानी इस्तेमाल करते हैं, दही होता है। और इसके अलावा ये तवे पे इसके अच्छे से बुनाई करनी चाहिए, जितना हो सके जितना टाइम दोगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। जैसे चांपे भी हों और सादा की डल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो मक्खन या देसी घी में बनता है, और कीमा भी हमारे पास होता है, तवा कीमा भी और मटर बटर कीमा भी।
2: जब मक्खन शामिल किया जाता है लजीज भुने हुए गोश्त में तो आय हाय हाय हाय क्या खुशबू आती है।
1: मजेदार।
2: यहाँ आपको एक और बात भी बताता चलूँ, टकाटक में अपनी मर्जी के अज्जा भी शामिल करवा सकते हैं, जैसा कि कुछ लोग खाली चांप, कुछ दिल या गुर्दा और कुछ सब मिक्स करवाना पसंद करते हैं। क्या आपको पता है लाहौर में टकाटक खाने की भी खास जगह है, जैसा कि लक्ष्मी चौक, भाटी गेट, गवाल मंडी, टक्साली गेट और अनारकली। टकाटक तो लगभग सारे लाहौर में मिलता है, मगर इन कुछ जगहों की बात ही कुछ और है। यहाँ मिलने वाला टकाटक सबसे मुनफरिद होता है।
1: मगर ऐसा क्यों?
2: क्योंकि यहाँ के शेफ कई साल से टकाटक को बनाते आ रहे हैं, कुछ का तो 20-20 साल का तजुर्बा भी शामिल है। इसी बारे में एक मशहूर होटल के मैनेजर की राय सुनते हैं।
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ीर अहमद है और मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट पर जॉब करता हूँ जिसका टकाटक बहुत मशहूर है। हमारे पूरे लाहौर के अंदर हमारा टकाटक जो स्पेशली है वो बड़ा मशहूर है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये हम गेस्ट के सामने तैयार करते हैं और बिल्कुल फ्रेश तैयार होता है, और इसकी आवाज़ से लोगों अट्रैक्टिव होते हैं और वो खुद ही खिंचे चले आते हैं इस तरफ, और हमें किसी एडवर्टाइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, हमारा रेस्टोरेंट जो है वो तकरीबन 20 साल से लाहौर के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमारा टकाटक बहुत अच्छा है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं।
1: ओ आई सी, ये बात बहुत दिलचस्प है। अब ये भी जरा बता दें कि ये किस वक्त तैयार किया जाता है।
2: टकाटक को शाम के वक्त तैयार किया जाता है। जहाँ टकाटक तैयार होता है वहाँ का माहौल अलग होता है। आस पास के लोग इसकी आवाज़ सुनकर जमा हो जाते हैं और इस मक्खन में तैयार होने वाले लजीज पकवान को बनते हुए देखते हैं और फिर इसकी लजीज खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींचती है। फिर इसको कोई भी खाए बगैर रह नहीं सकता।
1: अब तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। टकाटक को बनने में कितना वक्त लगता है?
2: टकाटक को बनने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और ये 10 से 15 मिनट इंतजार के बहुत खास होते हैं क्योंकि इसके बाद एक लजीज पकवान खाने को मिलता है।
1: हम भी इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं और टकाटक खाने चलते हैं, मगर जाने से पहले ये भी बता दें कि इसको किस तरह खाते हैं।
2: इसको रोटी या नान के साथ खाया जाता है, लेकिन कुछ लोग तो टकाटक के साथ रायता या सलाद लेना भी पसंद करते हैं और कुछ लोग टकाटक को बगैर किसी इजाफी चीज के साथ खाना पसंद करते हैं और सिर्फ नान या रोटी के साथ इसकी लज्जत का भरपूर फायदा उठाया जाता है।
1: जी बिल्कुल, हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। वैसे लाहौरी किस मौसम में ज्यादा टकाटक खाते हैं?
2: वैसे तो इसको किसी भी मौसम में खाया जा सकता है, मगर इसको खाने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे बेहतरीन है। जब सर्दियों की ठंडी ठंडी शाम हो और सामने टकाटक का तवा बज रहा हो तो फिर इस लम्हे के क्या कहने।
1: अब तो बस हो गई है, सर्दी भी है और गर्मा गर्म मक्खन में बकरे के अज्जा को भूनने वाले इस पकवान का सुनकर मेरी भूख भी बढ़ गई है।
2: इसीलिए तो कहते हैं, बंदा लाहौर आए और टकाटक ना खाए तो इसको लाहौर अधूरा सा लगेगा।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is Majdub 16.
2: In Sadaye Lahore, In Sadaye UCPS, Lotfan Gush Bedahid, FM 92.6, Jahane UCP.
3: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
4: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया, FM 92.6।

0: तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने यहाँ मीनारे पाकिस्तान में, मैं दोस्ती बस से लाहौर में आया वाघा बॉर्डर के जरिए, और मीनारे पाकिस्तान में आके मैंने ये साबित कर दिया है कि हमने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया, चूंकि ये वो जगह है जहाँ पाकिस्तान का ख्वाब जो है उसे अमली तौर पे पेश किया गया था कि हमने पाकिस्तान को हासिल करना है। और कायद अजम इस मौके पर मौजूद थे और ये बहुत अहम मौका था। और मिल्लत का पासवान है मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ मियाँ बशीर अहमद की नज़म भी पढ़ी गई थी जो मीनारे पाकिस्तान में मौजूद भी है, अंग्रेजी जबान में भी और उर्दू जबान में भी।
1: मीनारे पाकिस्तान दरअसल इस्लामी हदायत में तारीख की अलामत है और इस्लामी तारीखी हिस्से में हमें तारीखी जगह पर मीनार तमीर करने का एक तवील सिलसिला मिलता है जिसका आगाज दमिश्क की मस्जिद माविया से हुआ है। मीनारे पाकिस्तान की तामीर के लिए 1960 में साबिक सदर अयूब खान ने अवाम के इसरार पर कमेटी तश्कील दी। मीनारे पाकिस्तान का संग बुनियाद उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर अख्तर हुसैन ने 19 मार्च 1960 में रखा। मीनारे पाकिस्तान का डिज़ाइन तुर्की के माहिर तामीरात नसीरुद्दीन मुराद खान की तखय्युल का कारनामा है जिसने इस काम का कोई मुआवजा नहीं लिया था क्योंकि पाकिस्तान ने इसको नया घर दिया था। तहरीके आज़ादी के सरगर्म कारकुन अब्दुल खालिक एंड कंपनी को मीनारे पाकिस्तान की तामीर का एजाज़ हासिल हुआ। 31 अक्टूबर 1968 में मीनारे पाकिस्तान की तामीर मुकम्मल हुई जिस पर 75 लाख रुपए की लागत आई थी। मीनारे पाकिस्तान 181 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल था और यहाँ पर हफीज जालंधरी का मज़ार भी मौजूद है। मीनार की साख्त चार हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहला और बुनियादी हिस्सा एक खिले हुए फूल की सूरत में है। जब हम इसके अंदर दाखिल होते हैं तो हमें अल्लाह ताला के नाम दिखाई देते हैं। इन्हीं अल्लाह ताला के नामों के दरमियान हमें शायर मशरिक अलामा इकबाल की मशहूर नज्म खुदी का संग बुनियाद नजर आता है। तहरीक पाकिस्तान के मुख्तलिफ मराहिल के हवाले से कायदे आजम की तकरीरों के इक्तसाबात हमें हमारे प्यारे वतन के हुसूल की जिद्दोजहद की याद दिलाते हैं। मीनार पर बुलंदी से नीचे देखें तो इसकी बुनियाद एक खिलते हुए फूल का तासुर देती है। मीनार के ऊपर चढ़ने के लिए 306 सीढ़ियां हैं। मीनार की दीवारों पर कुरान की आयात और अलामा इकबाल के अकवाल और आज़ादी की मुख्तसर तारीख कुंदा है। करारदाद पाकिस्तान का उर्दू और बंगाली में मुकम्मल मतन भी दीवारों पर कुंदा है। इस बारे में पार्क की इंतजामिया के अफसर एहसानुल हक बताते हैं,
2: कंस्ट्रक्शन जो मीनार पाकिस्तान की है उसकी तमीर जो है वो 1960 में शुरू हुई थी और 68 में जो है ना वो कम्प्लीट हो गई थी। नसरुद्दीन मुराद इसके आर्किटेक्ट इंजीनियर थे जिनका ताल्लुक तुर्की से था। मीनार पाकिस्तान ऊपर जाने के तीन रास्ते हैं जो कि पाकिस्तान के तीन मुसल्ला अफवाज को शो करते हैं। मीनार पाकिस्तान की एक एक टाइल उसका कोई ना कोई मतलब है, उसके कोई मीनिंग्स हैं। और मीनार पाकिस्तान जहां अब मीनार पाकिस्तान की बिल्डिंग है, ये 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान इस झंडे के बिल्कुल जो है ना फ्लैग के नीचे मंजूर हुई थी और तमाम पार्टी जो है ना वहाँ बैठी थी और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मीनार पाकिस्तान उसकी जो है मंजूरी हो गई थी वहाँ 23 मार्च 1940 को। मीनार पाकिस्तान की हाइट 196 फुट 6 इंच है जो कि बादशाह मस्जिद के तकदस में इसको 6 इंच कम रखा गया है। पहले जो मीनार पाकिस्तान का टिपिकल एरिया था वो 56 एकड़ था। 56 एकड़ पे मुहित था मीनार पाकिस्तान जिसमें एक बड़ी प्यारी 9 एकड़ पर झील थी जो राउंड अबाउट मीनार पाकिस्तान पाकिस्तान के नक्शे के मुताबिक थी। तो अब इसको जो है ना वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है तो अब हुकूमत ने 2 अरब रुपया लगाकर बड़ी अच्छी इसकी झील बनाई है, उसमें फाउंटेन लगाया जिसके ऊपर 18 करोड़ रुपया लगाया। इसमें बड़े बड़े अच्छे अंदर जो है ना वो फूड कोर्ट बनाए हैं और रेस्ट रूम बनाए हैं और बगी ट्रैक बनाया अंदर जिसके ऊपर बग्गियाँ चलती हैं जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: अब्बा मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राबता करें। वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: द आवाज दे द लाहौर, द आवाज दे द यूसीपी नु आवरे FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is Magic 2.6.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

आप अपने खानदान को कैसा मुस्तकबिल देना चाहेंगे? फैसला अमल के साथ, कल नहीं आज, आज नहीं अभी। वसाइल और कुंबे के अफराद में तवाजुन रखकर माँ बच्चे की अच्छी सेहत, बच्चों की तालीम और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। रोशन मुस्तकबिल की है पहचान, मतवाजन कुंबा, खुशहाल पाकिस्तान।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।

0: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: क्या आपने अपने बेटे की रवैये या आदत में कुछ

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM, UCP Ki Duniya.
2: अरे ये किस चीज की आवाज है?
3: क्या तुम्हें पता नहीं ये लाहौर की मशहूर डिश टकाटक की आवाज है।
2: टकाटक, ये कैसा पकवान है?
3: जी बिल्कुल, ये पकवान ही है। जैसे पंजाब का मशहूर शहर लाहौर है, वैसे ही लाहौर का मशहूर पकवान टकाटक है। वैसे तो लाहौर के बहुत मशहूर खाने हैं, मगर टकाटक की बात ही अलग है।
2: वाह, क्या आप मुझे इसके बारे में मजीद बता सकते हैं?
3: बिल्कुल बता सकता हूँ। टकाटक ना सिर्फ अपने जायके बल्कि अपनी आवाज की वजह से भी मशहूर है। इस खाने का असल ताल्लुक कराची सिंध से है, मगर अब ये लाहौर पंजाब का मशहूर पकवान बन चुका है। एक और मजेदार बात आपको बताता चलूं, इसको कराची में कटाकट भी कहा जाता है और लाहौर में टकाटक कहा जाता है।
2: अच्छा, ये नाम टकाटक कैसे पड़ा?
3: इसका ये नाम इसकी आवाज की वजह से पड़ा है। जब एक बड़े से तवे पर दो तेज धार वाले चमचे टकराते हैं तो टकाटक की आवाज आती है। अब ये पकाने वाले की महारत पर मुनहसिर है कि वो इसको कितनी महारत से बजाता और बनाता है।
2: आपने ये तो बताया ही नहीं कि टकाटक किस चीज से बनता है।
3: तो मैं आपको बताता चलूं, टकाटक बनाने में बकरे के मुख्तलिफ अज्जा इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि गुर्दे, कपूरे, दिल, चांप वगैरह। इन सब अज्जा को मिसाला जात के साथ मिलाकर भुना जाता है और इस तरह से टकाटक तैयार हो जाता है। टकाटक के तैयार होने के बारे में मजीद जानते हैं एक मशहूर शेफ से।
4: इसमें सबसे पहले प्याज डलता है, फिर हरी मिर्च होती है, टमाटर होते हैं, मक्खन होता है, देसी घी है, जो वो जिसमें आप कहेंगे वो बना देंगे, और लाल मिर्च होती है, गरम मसाला होता है, काली मिर्च होती है, और लहसुन वाला पानी इस्तेमाल करते हैं, दही होता है, और इसके अलावा ये तवे पे इसके अच्छे से बुनाई करनी चाहिए, जितना हो सके जितना टाइम दोगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। जैसे चांपे भी हों और सादा की डल सकते, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो मक्का में या देसी घी में बनता है, और कीमा भी हमारे पास होता है, तवा कीमा भी और मटर बटर कीमा भी।
3: जब मक्खन शामिल किया जाता है लजीज भुने हुए गोश्त में तो आय हाय हाय हाय, क्या खुशबू आती है।
2: मजेदार।
3: यहाँ आपको एक और बात भी बताता चलूँ, टकाटक में अपनी मर्जी के अज्जा भी शामिल करवा सकते हैं, जैसा कि कुछ लोग खाली चांप, कुछ दिल या गुर्दा और कुछ सब मिक्स करवाना पसंद करते हैं। क्या आपको पता है लाहौर में टकाटक खाने की भी खास जगह है, जैसा कि लक्ष्मी चौक, भाटी गेट, गवाल मंडी, टक्साली गेट और अनारकली। टकाटक तो लगभग सारे लाहौर में मिलता है, मगर इन कुछ जगहों की बात ही कुछ और है। यहाँ मिलने वाला टकाटक सबसे मुनफरिद होता है।
2: मगर ऐसा क्यों?
3: क्योंकि यहाँ के शेफ कई साल से टकाटक को बनाते आ रहे हैं, कुछ का तो 20-20 साल का तजुर्बा भी शामिल है। इसी बारे में एक मशहूर होटल के मैनेजर की राय सुनते हैं।
5: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ीर अहमद है और मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट पर जॉब करता हूँ जिसका टकाटक बहुत मशहूर है। हमारे पूरे लाहौर के अंदर हमारा टकाटक जो स्पेशली है वो बड़ा मशहूर है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये हम गेस्ट के सामने तैयार करते हैं और बिल्कुल फ्रेश तैयार होता है, और इसकी आवाज़ से लोगों अट्रैक्टिव होते हैं और वो खुद ही खिंचे चले आते हैं इस तरफ, और हमें किसी एडवर्टाइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, हमारा रेस्टोरेंट जो है वो तकरीबन 20 साल से लाहौर के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमारा टकाटक बहुत अच्छा है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं।
2: ओ आई सी, ये बात बहुत दिलचस्प है। अब ये भी जरा बता दें कि ये किस वक्त तैयार किया जाता है।
3: टकाटक को शाम के वक्त तैयार किया जाता है। जहाँ टकाटक तैयार होता है वहाँ का माहौल अलग होता है। आसपास के लोग इसकी आवाज़ सुनकर जमा हो जाते हैं और इस मक्खन में तैयार होने वाले लजीज पकवान को बनते हुए देखते हैं और फिर इसकी लजीज खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींचती है। फिर इसको कोई भी खाए बगैर रह नहीं सकता।
2: अब तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। टकाटक को बनने में कितना वक्त लगता है?
3: टकाटक को बनने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और ये 10 से 15 मिनट इंतजार के बहुत खास होते हैं क्योंकि इसके बाद एक लजीज पकवान खाने को मिलता है।
2: हम भी इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं और टकाटक खाने चलते हैं, मगर जाने से पहले ये भी बता दें कि इसको किस तरह खाते हैं।
3: इसको रोटी या नान के साथ खाया जाता है, लेकिन कुछ लोग तो टकाटक के साथ रायता या सलाद लेना भी पसंद करते हैं और कुछ लोग टकाटक को बगैर किसी इजाफी चीज के साथ खाना पसंद करते हैं और सिर्फ नान या रोटी के साथ इसकी लज्जत का भरपूर फायदा उठाया जाता है।
2: जी बिल्कुल, हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। वैसे लाहौरी किस मौसम में ज्यादा टकाटक खाते हैं?
3: वैसे तो इसको किसी भी मौसम में खाया जा सकता है, मगर इसको खाने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे बेहतरीन है। जब सर्दियों की ठंडी ठंडी शाम हो और सामने टकाटक का तवा बज रहा हो तो फिर इस लम्हे के क्या कहने।
2: अब तो बस हो गई है, सर्दी भी है और गर्मा गर्म मक्खन में बकरे के अज्जा को भूनने वाले इस पकवान का सुनकर मेरी भूख भी बढ़ गई है।
3: इसीलिए तो कहते हैं, बंदा लाहौर आए और टकाटक ना खाए तो इसको लाहौर अधूरा सा लगेगा।

0: University Studios, where knowledge is empowerment. This is Magical Point 6.
1: In Sadaye Lahore, in Sadaye UCPS, Lotfan Gush Bedahid, FM 92.6, Jahane UCP.
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया
3: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया, FM 92.6.

0: क्योंकि पाकिस्तान ने इसको नया घर दिया था। तहरीके आज़ादी के सरगर्म कारकुन अब्दुल खालिक एंड कंपनी को मीनार पाकिस्तान की तामीर का एजाज हासिल हुआ। 31 अक्टूबर 1968 में मीनार पाकिस्तान की तामीर मुकम्मल हुई, जिस पर 75 लाख रुपए की लागत आई थी। मीनार पाकिस्तान 181 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल था और यहाँ पर हफीज जालंधरी का मज़ार भी मौजूद है। मीनार की साख्त 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहला और बुनियादी हिस्सा एक खिले हुए फूल की सूरत में है। जब हम इसके अंदर दाखिल होते हैं तो हमें अल्लाह ताला के नाम दिखाई देते हैं। इन्हीं अल्लाह ताला के नामों के दरमियान हमें शायर मशरिक अलामा इकबाल की मशहूर नज्म खुदी का संग बुनियाद नजर आता है। तहरीक पाकिस्तान के मुख्तलिफ मराहिल के हवाले से कायद आजम की तकरीरों के इक्तसाबात हमें हमारे प्यारे वतन के हुसूल की जिद्दोजहद की याद दिलाते हैं। मीनार पर बुलंदी से नीचे देखें तो इसकी बुनियाद एक खिलते हुए फूल का तासुर देती है। मीनार के ऊपर चढ़ने के लिए 306 सीढ़ियां हैं। मीनार की दीवारों पर कुरान की आयात और अलामा इकबाल के अकवाल और आज़ादी की मुख्तसर तारीख कुंदा है। करारदाद पाकिस्तान का उर्दू और बंगाली में मुकम्मल मतन भी दीवारों पर कुंदा है। इस बारे में पार्क की इंतजामिया के अफसर एहसानुल हक बताते हैं,
1: कंस्ट्रक्शन जो मीनार पाकिस्तान की है उसकी तमीर जो है वो 1960 में शुरू हुई थी और 68 में जो है ना वो कम्प्लीट हो गई थी। नुसरुद्दीन मुराद इसके आर्किटेक्ट इंजीनियर थे जिनका ताल्लुक तुर्की से था। मीनार पाकिस्तान ऊपर जाने के 3 रास्ते हैं जो कि पाकिस्तान के 3 मुसल्ला अफवाज को शो करते हैं। मीनार पाकिस्तान की एक एक टाइल उसका कोई ना कोई मतलब है, उसके कोई मीनिंग्स हैं। और मीनार पाकिस्तान जहां अब मीनार पाकिस्तान की बिल्डिंग है, ये 23 मार्च 1940 को करारदादे पाकिस्तान इस झंडे के बिल्कुल जो है ना फ्लैग के नीचे मंजूर हुई थी और तमाम पार्टीज जो है ना वहाँ बैठी थी और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मीनार पाकिस्तान उसकी जो है मंजूरी हो गई थी वहाँ 23 मार्च 1940 को। मीनार पाकिस्तान की हाइट 196 फुट 6 इंच है जो कि बादशाह मस्जिद के तकदस में इसको 6 इंच कम रखा गया है। पहले जो मीनार पाकिस्तान का टिपिकल एरिया था वो 56 एकड़ था, 56 एकड़ पर मुहित था मीनार पाकिस्तान, जिसमें एक बड़ी प्यारी 9 एकड़ पर झील थी जो राउंड अबाउट मीनार पाकिस्तान पाकिस्तान के नक्शे के मुताबिक थी। तो अब इसको जो है ना वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है, तो अब हुकूमत ने 2 अरब रुपया लगाकर बड़ी अच्छी इसकी झील बनाई है। उसमें फाउंटेन लगाया जिसके ऊपर 18 करोड़ रुपया लगाया। इसमें बड़े बड़े अच्छे अंदर जो है ना वो फूड कोर्ट बनाए हैं और रेस्ट रूम बनाए हैं और बगी ट्रैक बनाया अंदर जिसके ऊपर बगियाँ चलती हैं, जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि सलाम के दौर की बगियाँ थीं जो सब चलती थी वो चलती हैं। एक सॉफ्ट व्हील ट्रेन बनाई है बड़ी अच्छी जो पब्लिक के लिए बच्चों के लिए बड़ी अच्छी है। तो कार्ड चलती हैं वहाँ विजिटर के लिए, जो मजदूर अफराद हैं या जो अंदर ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते उनके लिए गवर्नमेंट ने कार्ड्स गोल्फ कार्ड्स जो है अंदर वो चलती हैं। तो बड़ा अच्छा निज़ाम बन गया है।
0: ये मीनार पाकिस्तान गवाह है कायदे आज़म के फरमान का, जिन्होंने कहा, हम अहद हाजिर में ऐसी तजर्बा गाह का क्याम चाहते हैं जहाँ इस्लाम के अखुवत हुरियत और मसावात के ज़रिए असूलों को आजमाया जा सके और एक ऐसी रियासत का क्याम अमल में लाया जा सके जो दुनिया भर के इंसानों के लिए मीनार नूर साबित हो। 17 दिसंबर 2016 बरोज़ हफ्ता शाम 6 बजे इसी मीनार पाकिस्तान को ग्रेटर इकबाल पार्क का नाम दिया गया और इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद की गई। इस मंसूबे को 9 नवंबर को मुकम्मल किया गया जिसका रकबा 120 एकड़ है। इस मंसूबे को मुकम्मल करने में 2 अरब रुपए की लागत आई। عام دنوں میں اس پارک میں آنے والی عوام کی تعداد 10,000 اور تعطیل کے دنوں میں 150,000 لوگ اس پارک کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی جگہ پہ تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی جلسہ منعقد ہوا، جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا وسیع و عریض رقبہ تاریخی جلسوں کے لیے مثبت ثابت ہوا۔ پارک میں مصنوعی جھیل، بگی ٹریک، تاریخی میوزیم اور داخلی دروازوں کی نئی تعمیر کی گئی۔ مینار پاکستان کے اطراف میں اب چاروں صوبوں کے ثقافتی پیویلین بنائے گئے، اوپن ایئر جم، لائبریری اور فوڈ کورٹ بھی بنائے گئے۔ شام ہوتے ہی ہلکی پھلکی موسیقی اور پانی کے ساتھ رقص کرتی رنگ برنگی روشنیاں ڈانسنگ فاؤنٹین کی صورت میں لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں۔ اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے شائقین کی ایک بڑی تعداد شام ہوتے ہی اس پارک کا رخ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مینار پاکستان کو مختلف ثقافتی تہواروں پہ رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا جاتا ہے اور مختلف شوز منعقد کیے جاتے ہیں۔ مینار پاکستان آج بھی پاکستانی عوام کے لیے اہمیت کا حامل ہے اور قومی یکجہتی کا باعث ہے۔ Do you want-

0: मौसी की चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फहद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 90

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: अब्बा मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राबता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: द आवाज दे द लाहौर, द आवाज दे द यूसीपी नु आवरे FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

आप अपने खानदान को कैसा मुस्तकबिल देना चाहेंगे? फैसला अमल के साथ, कल नहीं आज, आज नहीं अभी। वसाइल और कुंबे के अफराद में तवाजुन रख कर माँ बच्चे की अच्छी सेहत, बच्चों की तालीम और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। रोशन मुस्तकबिल की है पहचान, मतवाजन कुंबा, खुशहाल पाकिस्तान।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: अगर कभी मेरी याद आए.
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.
2: आप सुन रहे हैं University of Central Punjab FM 92.6.

0: University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: पाकिस्तान में अपने अपने इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुर और ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।